0: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगी। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
1: Get lost।
0: पक्का नहीं मान रहा?
1: हाँ नहीं मानो, जो करना कर ले। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
0: राजा। ठीक है।

0: manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita, dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: भगवान ने पैदा किया तो खुदा ने पाला, कोई उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है, अल्लाह।